0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 7 बज्यो।